तकजीब की तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था उन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अंधे लोग थे।

0: हम इसमें नहीं रह सकते, बहुत तकलीफ दे बात है, लेकिन
1: والشمس تجري لمستقر لها

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। हे अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ऐ अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं है। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ए करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

0: back after this short commercial break.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM. मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें. रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं. बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें. बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं. बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें. ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें. नशीबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें. जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें. दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें. रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें. खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें. बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें. हिफाजत सिर्फ एहतियात में.
3: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
4: On the new line from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे कार्ड हैं, ये डलवाते हैं। मैं कहती ये नहीं है। वो कहते हैं आप क्यों यहाँ बैठी हो जब आप ये नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई इसलिए नहीं कर सकती कि इसको इसको मॉनिटरिंग देखें, ट्रांसपेरेंसी इसकी ये है कि इसको वर्ल्ड बैंक आई एम
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: On the new line from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
3: एंटरटेनमेंट हो या अपडेट्स, यह है तुम्हारी हर मूड का दोस्त।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: लेकिन ज्यादातर ये इवेंट। यू आर लिसनिंग FM 101 रेडियो पाकिस्तान। FM 101 ट्यून इन टू द वन अबव।
1: किस तरह से हो रही है, अच्छा किस तरह से वो नजर आएगा हमें, क्या हमें
2: कोक स्टूडियो सीजन 9।

0: then you are lucky कि ठीक है आप देख सकते हैं. बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, तो आपको सारी की सारी
1: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज.
2: Thank you very much.

0: हमें इस साल आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके और एक जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का उसको एक तरह से उसको पामाल किया गया और इंडिया की जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की मोदी की वो खुल के सामने आई। किस तरीके से उन्होंने जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ दिए कश्मीरियों पे जो पहले ही अंडर सीज थे या पहले ही उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत इंडिया की तरफ से की जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा इंसानी कर्फ्यू नाफिज किया गया, 8 लाख से 9 लाख फौजियों को छोड़ा गया और इस तरह के जंगी क्राइम या जंगी जो जराइम है हमने कभी नहीं देखे जो हिंदुस्तान वहां कर रहा है। 5 इंटरनेशनल सहाफियों ने पाकिस्तान आना था बरास्ता वागा, उन्होंने फिर जाना था कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके लोगों से मुलाकात करनी थी और उन्हें लाखों का विजिट करना था जहां फ्रीक्वेंटली जो है वो इंडिया फायर खोल देता है और वहां पे आम सिविलियंस की जाने लेता है और हिंदुस्तान ने उनको यहां आने से मना कर दिया है, जो ये बता रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस तरह से एक्सेस मिल गई मीडिया को या इंटरनेशनल फॉरेन मीडिया को तो उनकी जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट मैं समझती हूँ कि कश्मीर के सफीर वजीर आजम इमरान खान साहब की बेहतरीन जो पॉलिसी थी डिप्लोमेसी की वजह से उन्होंने यूएनजीए में भी बहुत भरपूर तरीके से आवाज बुलंद की और उसके साथ साथ तकरीबन 100 से ऊपर उन्होंने मीटिंग्स की जो साइट पे हुई मुख्तलिफ हेड ऑफ द स्टेट से और पाकिस्तान का मौकफ बयान किया। कश्मीर का मुकदमा जो है बतौर कश्मीर के सफीर और कश्मीरी आवाम के वकील वहां पे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, जिसका नतीजा ये निकला कि जो इंडिया इतने अरसे से शोर मचा रहा था कि ये हमारा जाती मामला है या हमारा आपस का मामला है, वो इंटरनेशनलाइज हो गया और यूएन ने ना सिर्फ उसको इंडोर्स किया बल्कि उसकी पासगश हमें यूरोपियन यूनियन में भी सुनाई दी कि 3 के करीब कम से कम कॉन्फ्रेंसेज जो है वो 5 अगस्त के बाद वहां हुई और इसके अलावा यूके की पार्लियामेंट में भरपूर आवाज सुनाई दी। इस तरह मैं समझती हूँ तमाम इस्लामी बरादर ममालिक को भी चाहिए कि जो हमारे मजलूम कश्मीरी बहन भाई जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं, हमारी बहनें वहां अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दे रही हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो पैलेट गन्स का शिकार होते हैं, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, कुरान वानी की तरह के बहुत सारे किरदार हैं, इनकी कुर्बानियों को जहन में रखते हुए आवाज उठाएं और इंटरनेशनली इस मसले को हल करने में पाकिस्तान की मदद करें ताकि हमारे जो कश्मीरी अवाम है उनको इस हिंदुत्व के जो जुल्म सितम है इससे निजात मिले।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: जहां भी और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: We'll be right back after.
1: तेरी चाहत में खो जाएं, हम तेरे ही हो जाएं, तुझ पे कुर्बान मेरे दिलो जान, हम गीत तेरे ही गाएं।
2: पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम, हमारी सरबुलंदी और अजमत का निशान। जश्न आजादी के सिलसिले में FM 101 की खुसूसी नशरियात। परचम तो लहराएगा,
3: परचम तो लहराएगा, परचम तो लहराया है, परचम तो लहराएगा और भी ऊंचा जाएगा।
2: नजरे वतन, मिली नगमे, आजादी के वाकयात, रोड शोज और वतन की मोहब्बत से सरशार नौजवानों के पैगामात। तो सुनते रहिए FM 101 की खुसूसी नशरियात, परचम तो लहराएगा।
3: परचम तो लहराया है, परचम तो लहराएगा और भी ऊंचा जाएगा और भी।
2: 12 अगस्त से 14 अगस्त तक FM 101 चैनल पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा FM रेडियो नेटवर्क।

तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी ही दीवानी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में अमन सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर पुलिस अफसरान और अहलकारों को खिराजी अकीदत पेश किया है। नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। हुकूमत ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका की ख्वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच डम्बोला में जारी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर खित्ते और आलमी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया है। ईरान ने पाकिस्तान के साथ कराची और गवादर बंदरगाहों के जरिए तिजारत और इक्तिसादी तआवुन को फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया है। वजीर इत्तलात और वजीर मनसूबाबंदी ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान टेलीविजन की तंजीम नौ और जदीद खतूत पर उस्तवार करने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया है। दम्बोला में पाकिस्तान और श्रीलंका की ख्वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच जारी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break.
1: चाहत में खो जाएं, हम तेरे ही हो जाएं, तुझ पे कुर्बान मेरे दिलो जान, हम गीत तेरे ही गाएं।
2: पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम, हमारी सरबुलंदी और अजमत का निशान। जश्न आजादी के सिलसिले में FM 101 की खुसूसी नशरियात, परचम तो लहराएगा,
3: परचम तो लहराएगा, परचम तो लहराया है, परचम तो लहराएगा और भी ऊंचा जाएगा।
2: नजरे वतन, मिली नगमे, आजादी के वाकयात, रोड शोज और वतन की मोहब्बत से सरशार नौजवानों के पैगामात। तो सुनते रहिए FM 101 की खुसूसी नशरियात, परचम तो लहराएगा,
3: परचम तो लहराया है, परचम तो लहराएगा और भी ऊंचा जाएगा।
2: 12 अगस्त से 14 अगस्त तक FM 101 चैनल पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा FM रेडियो नेटवर्क।

0: listening to FM 101, a Bale Bale or Shawa Shawa.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
1: सुनते रहिए FM 101.

दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर तवानाई ने कहा है कि पाकिस्तान में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की मकामी सतह पर तैयारी के फरोग के लिए पॉलिसी को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। ईरान ने पाकिस्तान के साथ कराची और गवादर बंदरगाहों के जरिए तिजारत और इक्तसादी तावन को मजीद फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भारत की जानिब से आइन की दफा 370 और 35A की यकतरफा मनसूखी को 7 साल मुकम्मल होने पर कल यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। दम्बोला में 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की खवातीन टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी।

0: Hi, this is FM 101.
1: मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें, जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती है और खतरा बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाए कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो, ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

हिजर फिराक दे तीर दिल मार मुझाया, दर्द अंदर दी पीड़ डाढ़ा सख्त सता। इश्क है दुखड़े दिल दी शादी, इश्क है दुखड़े दिल दी शादी, इश्क है रहबर

शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। ईरान ने पाकिस्तान के साथ तिजारत और इक्तसादी तआवुन को मजीद फरोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर दाखला ने कहा है कि पुलिस के शहदा कौम का फख्र हैं और उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर कल मनाया जाएगा। आज दम्बोला में तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की खवातीन टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी।

0: मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
1: इंतहा पसंद ग्रोह नौजवानों की माशी और जज्बाती कमजोरियों का फायदा उठाकर उनको नफरत की तरफ मायल करते हैं। किसी भी गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का शिकार होने के बजाय अपनी तनकीदी सोच का इस्तेमाल करें और तशद्दुद को मुस्तरद कर दें।
2: जिसे लिखा गया है आंसुओं से, मैं हूं वो तहरीर, मैं दर्द

खातिर जमा कर हीर नू कहे सहती तेनू रांझे दे नाल मिलाव सां मैं आसमान ते जमीन दा मेल कर सां बेड़ी रेत दे विच तराव सां मैं टकराव सां परबतां पारियां नू बाज बदलां मीह लियाव सां मैं वारे शाह अचंबड़ा नवा होया गल्लां जग जहान सुनाव सां मैं हीर ना के पट दा पहन त्योर वाली इतर फुलेल लगाउंदी है वाल पा के मीडियां खूनियां नू गोरे मुख ते जुल्फ पलमाउंदी है कज्जल पिनड़े नैन अपराध लुटे दूने हुस्न दे कटक लैताउंदी है मल वटना होंटा ते ला सुरखी नवा लोड़ ते लोड़ चढ़ाउंदी है हाथी मस्त छुट्टा छना छन छन के कतल आम खलकत हुंदी आउंदी है नैन मस्त ते लोड़ दंदासड़े दा शाह परी ए चंग दी आउंदी है कदी कड के कुंड लुड़ा देंदी कदी खोल के मार मुकाउंदी है कुंड ला के लटक दिखा सारी जट्टी रुठड़ा यार मनाउंदी है।

बोली हीर बेड़िया जा साथों कोई खुशी ना होवे ते हसीए क्यों परदेसियां जोगियां कमलियां नूं विचों जीव दा भेत चा दसीए क्यों जड़ा कन लपेट के नस जाए मगर लग के उस नूं तसीए क्यों जे ते आप इलाज ना जानिए बे जिन भूत दे जादूड़े दसीए क्यों जे तू अंतरन्ना वल वेखना सी वाई जोतरे छड के नसीए क्यों वर्षा उजाड़ के वसदियां नूं आप खैर दे नाल फिर वसीए क्यों।

0: इस गए हुए थे तो उन्होंने उनका इंटरव्यू किया और मुझे बहुत खुशी हुई, वो बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान से आपका कोई दोस्त भी है, तो उनका यस यस तारिक महमूद।
1: अच्छा वाह,
0: तो ही ओन जबरदस्त बड़ी एक अच्छा एक
1: उनको भी याद है आज भी,
0: याद है
1: चीज़ें
0: एक अच्छी यादें हैं। और जो कुछ हुआ इट वॉज पेनफुल, इट वॉज ट्रेजिक, क्योंकि बेसिकली तो एक मसले तो सियासी मसले, इनके सियासी हल होते हैं,
1: बिल्कुल होते हैं,
0: इनमें कोई आप एक कोई हम उन सियासी मसलों को किसी और रास्ते से हम नहीं हल करवाते। यही मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, हमारे कामों के लिए ये सबक है और इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए
1: और इसे सबक हासिल करना चाहिए सबसे
0: ज़रूरी।
1: हाँ,
0: मतलब देखना अच्छा वक्त गुजरा है। और फिर मैं सवा चार साल वहाँ रहा, मुझे नहीं याद कि मेरे वहाँ चार साल क़याम के दौरान हम लड़ते झगड़ते थे कि जी रिसोर्सेज की तकसीम ठीक नहीं हो रही, बड़े इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत बढ़ती जा रही है, बंगाल बहुत पीछे रह चुका है। ये नहीं कि वहाँ भी तरक्की होती रही, लेकिन हमारा यहाँ पर एक चूँकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल था वो इस किस्म का था दैट इज़ फेवरेबल टू वेस्ट पाकिस्तान, और जो उनको दैट वुड पुट देम इन अ डिसएडवांटेजेस पोजिशन। तो वो कहते थे कि वी आर वन पॉलिटी, हम एक सियासी इकाई ज़रूर हैं लेकिन वी आर टू डिफरेंट इकॉनमीज।
1: ओके,
0: हम अलहदा अलहदा मईशतें हैं, मगरबी पाकिस्तान की अपनी मईशत है, मशरक़ी पाकिस्तान की अपनी मईशत है।
1: अच्छा,
0: आप कुछ जो कुछ मगरबी पाकिस्तान में ख़र्च करते हैं उसका जो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट है वो मगरबी पाकिस्तान में रहता है, वहाँ नहीं पहुँचता, उसका असर नहीं आता। और आपके देखें ना जितने बड़े बड़े मनसूबे थे वो मगरबी पाकिस्तान में, इंडस्ट्री यहाँ पे थी और एक ब्यूरोक्रेसी और एक आपका मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वो यहीं पे थे। और उनको कह दिया जाता था कि जी के डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन वेस्ट पाकिस्तान, कि अगर वेस्ट पाकिस्तान मजबूत होगा तो ईस्ट पाकिस्तान की हिफाजत हो जाएगी। लेकिन 65 की वॉर में इस तरह प्रूव नहीं हुआ, दे फेल्ट दे वर लेफ्ट आउट। तो ये ग्रीवेंसेस थी, तो ग्रीवेंसेस का तो हल एक बड़ी सूझबूझ से और मिल बैठने से होता है। उस चीज़ में मेरा ख्याल है कुछ हमारे कमी रह गई और उस चीज़ का फुकदान था, जो अब यकीनन हमारे यहाँ एक बेहतर शऊर की वजह से, एक स्पिरिट ऑफ लर्निंग की वजह से चीज़ों में कुछ बेहतरी भी नज़र आ रही है।
1: एंड सर, हाउ वाज जो भी हाल ही पाकिस्तान का एक रोल रहा है ओवरऑल सिनेरियो में, आपने देखा उसमें, आप कैसे देखते हैं सिनेरियो को जिसमें ईरान और अमेरिका और इजराइल वॉर, फिर इसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा, आप
0: नहीं, एक अच्छा कुदरत ने हमें एक अच्छा मौका दिया और इट्स अ वेरी जिंजरली एंड अ वेरी डेफ्ट रोल वी हैव टू प्ले, क्योंकि इसमें देखें ना बड़े एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस आपको नज़र आते हैं जो अमंग द वॉरिंग पार्टीज, तो हमें बड़ा फूंक फूंक कर इसमें संभल कर कदम रखने की ज़रूरत है कि इसमें, लेकिन एक लिहाज से है कि पाकिस्तान को एक मौका मिला है कि टू बी ऑन द सेंट्रल स्टेज एंड हाउ बेस्ट वी कैन विंडिकेट इट ऑल डिपेंड्स कि इस सूरत हाल का क्या सिलसिला
1: कैसे वो करते हैं। अच्छा सर, आप हाल ही में USA थे और वहाँ पे आपने एक अपना बड़ा अच्छा टेन्योर भी गुजारा, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? और जाहिर बात है एक डिफरेंट एक्सपोजर होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, सो आपने क्या देखा इस दफ़ा?
0: इकोनॉमिक हार्डशिप आजकल वहाँ भी आपको नज़र आती है।

तू बचड़ाए बेगानी कुफदा करमा दा नाम बुलंद मत हरीफ आवे रुबाब उते करे हंस के तीर पसंद

इस्लाम में एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कोई भी नजरिया या मकसद मासूम लोगों का खून बहाने की इजाजत नहीं देता। इंसानी जान की हुर्मत का पास रखना हम सबका दीनी फरीजा है।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमात और तफरीह का साथी। आवाज की दुनिया का दोस्त।

0: escuché una.
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।

बावजूद कश्मीरियों में आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, बेजज्बा शौक सुनाए क्या, कोई ख्वाब ना हो तो बताए क्या।

और इसके सिवा तुझको हमारी कौन सी बात बुरी लगी है कि जब हमारे परवरदिगार की निशानियां हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र इस्तकामत के दहाने खोल दे और हमें मारियो तो मुसलमान ही मारियो।